सतगुर होई दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होई दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुर होई दयाल त दुख ना जानी है, सतगुर होई दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं मानदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल।

कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रिहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट ब्रिज मोहन .com।

पूरे की सरणी उभरे कागज सगल सवारे हर जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारिया सतगुरु पूरे अपनी कृपा धार रहा सदा आनंद कर हो मेरे प्यारे हर गोविंद गुर गाखिया बड़ी बड़ियाई नानक करते की भय कृपाल स्वामी मेरे तित साचे दरबार सतगुर ताप गवाया पाई ठान पई संसार अपने जी जत आपे राखे जमहे कियो हटतार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरिए काटन हार रहा तिसकी सरणी उबरे पाई

आइए पाई मन तन शीतल होए। सूर खाला पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा पल पाई रहा। सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ भय दयाला, दुख मिटया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो, नानक पत्रा की परमेश्वर उधरिया सब संसारो। सूरत माला परिवार मेरा सब गुरु रखवाला हुआ, काल कृपा प्रभान मेरा हर गोविंद भवान रुआ रहा। सात संगत सब फल पाए, सतगुर के बल जाए।

सफल कर मस्तक धारिया। सूरत महला पंजवा जी अजंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाए अपने से बकिया पेरा ते पूरर भई। पार ब्रह्म पूरा मेरा नाल, गुर पूरा पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहा

शोक सपना से कब अपना कृपा तारी। आठ पहर आराधा स्वामी पूर्ण काल हमारी, हर जियो तू सुख संपत रात, रात ले हो पाई मेरे को प्रभा अरदास प्रभाव। जो मांगो सुई सो पाओ अपने खसम परोसा,

हृदयं पातु हनुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु त्रिशाम्पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रो किलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

0: पंचमुखी का मान कवच सभी प्रकार के नष्ट और दूर करने वाला है। इसके नियमित पाठ सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर करने वाला है। पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी और आप श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के
1: श्री अंगारकटाच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छंदः अंगारको देवता अं बीजं कं शक्तिः रं कीलकं मम अंगारक प्रसाद।

0: आप सभी श्रोताओं का घर से साथ में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय मदद। और विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की सोमवार की सभी शहरों में बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग की गई है, बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं, आप जरूर जाइएगा, बच्चों को साथ ले जाइएगा, अपने फैमिली के साथ, बहुत सारे लोग घूमने कहीं ना कहीं निकले हुए हैं, विच इज जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आइए, इसी के साथ आपका पहला लॉन्ग वीकेंड है समर का, इस साल का 2026, तो आइए। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर का आपको बारबेक्यू चाहिए, जहाँ फिर बढ़िया बढ़िया अपने आउटडोर का सोफा भी चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है, और उनकी मंथली स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, 905-799-0045 पे आप उन्हें कीजिएगा। और फिर आपने अभी शादियां होने वाली हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई भी मौका है, आप सोने के गहने लेना चाहते हो, सोने की बार्स लेना चाहते हो, डायमंड अप टू 70% ऑफ आपको चाहिए, तो आप जाइएगा अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है मॉर्टर में, तो और जानकारी के लिए आप अपने ऑर्डर बुक करने के लिए उनको कॉल कर सकते हो, 905-673-0100-905-673-0100। और अभी आपने घर खरीदा है, आपको मूव तो होना है, मूविंग के लिए आपका कनाडा भर में मदद करते हैं और बहुत हिफाजत से आपके सामान को ले जाते हैं एच के मूवर्स, आप उनको कॉल कीजिए, आज ही अपना मूविंग के लिए ट्रक बुक कर सकते हो, तो 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, तो एच के मूवर्स, और आपका कोई भी बड़े बड़े सामान को भी, आपके कारें और जो भी आपका सामान होगा, बहुत आपके लिए हिफाजत से उनकी पूरी टीमें अलग अलग हैं, तो वो आपके सामान को बड़े अच्छे तरीके से मूव करते हैं, तो एच के मूवर्स 416-524-6704 एच के मूवर्स।
1: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है खासो शहर में, तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी का गीत, ठीक है जी, तो मिस पूजा ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं आपके लिए, तो आज उन्हीं का गीत आपको सुनाते हैं, और उम्मीद रखूंगी आपको पसंद आएगा। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है और ट्रक रिपेयर के लिए आपको जाना होगा बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, 715 रोड मिसी सागा में मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055 905-625-0055 पे आप कॉल कर सकते हो ट्रक रिपेयर के लिए, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर। और अब आपके लिए बहुत सारे

जी हाँ, तो एक मैसेज से आप जी हाँ, तो पंजाबी का गाना एक के बाद दूसरा लग गया, तो आपके लिए बढ़िया सा गाना सुनाना चाहती हूँ, सोनी पावला का है ना, तो आपको जरूर सुनाती हूँ। बस अभी आपका अगर आपने किचनर वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना है, बेचना है, तो आप नसीब सिंह को कॉल कीजिए 519-546-1260 पे। आप नसीब सिंह को कॉल कर सकते हैं, अपने किचन वाटरलू गोल्फ में कोई भी किसी किस्म का भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में घर खरीदना है, बेचना है, तो आप नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिएगा। नसीब फ्रेंड आपके लिए बढ़िया तरीके से आपको सेवाएं देंगे। तो अब अगर आपने कहीं पे भी किसी तरह का भी आपको आपने किसी किस्म की भी आपको आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर खरीदना है, और अभी समर आ गई है, तो आपने बढ़िया बढ़िया अपने घर के लिए सोफा, फर्नीचर लेने हैं, या फिर आपने अपने घर के लिए बढ़िया सा टीवी लेना है, लेटेस्ट मॉडल का टीवी लेना है, गिफ्ट लेके देना है किसी को, किचन की गैजेट्स आपको चाहिए बढ़िया लेटेस्ट, और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड घर का फर्नीचर चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएं। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में। उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने मूव होना है, एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, तो आप और जानकारी के लिए अपने ट्रक बुक करने के लिए 416-524-404 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704। अब आपको सुनाते हैं सोनी पावला का ये गाना।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1135।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको सुनाते हैं बहुत ही बढ़िया सा गीत गुरदास मान जी का। जी हाँ, गीत आपको सुनाएंगे आज, बढ़िया बढ़िया पंजाबी के गीत सुनते हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो आपका कुछ लोग भी कहीं जा रहे होंगे या कहीं से आ रहे होंगे, तो काम से आ रहे होंगे कई लोग, तो शिफ्टें करते हैं, तो आप इंजॉय कीजिएगा सॉन्ग गुरदास मान जी का। गुरदास मान जी के तो जितने भी गाने हैं सब ही कमाल के हैं। कोई भी गीत आपके लिए सुना, आपको सुना दिया जाए। मेरी कोशिश है, उनका पहला जो गाना था छल्ला, वो बड़ा पहले उस उन दिनों में बड़ा सभी को अच्छा लगता था। वो टीवी पे भी आते थे तो सभी उनसे वही गाना सुनना चाहते थे छल्ला। तो आइए आपको वही गीत गुरदास मान जी का सुनाएंगे। तो अगर आपने किसी किसी को भी खाना आपने लेना है या फिर ऑर्डर करना है, न्यूली रेनोवेटेड है न्यू इंडिया स्वीट्स का रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है, तो वहाँ पे आपके लिए उनका खाना बहुत ही बढ़िया होता है, स्वादिष्ट होता है। आपको कोई भी खाना किसी किस्म का भी ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है किसी इवेंट के लिए, किसी पार्टी के लिए, तो उसमें भी आप बहुत बढ़िया आपकी वहाँ पे खाना बढ़िया आपको बना के देंगे। तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट को कॉल कीजिएगा 905-814-1730 9058-14-1730। तो आपके लिए अभी मैं देख रही हूँ कि चलो ये आपको सुनाते हैं कि दुनिया में अभी उन्होंने ये एक बड़ा सवाल उठाया था कि की बनो दुनिया का, कि दुनिया में हर तरह के अजूबे हो रहे हैं अभी, तो आपके लिए कितना एडवांस हो गया है। एआई ने तो कमाल ही कर दिया है हर एक चीज में, हर एक बिजनेस में बहुत सारी तब्दीलियां एडवांसमेंट कर दी है।

0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो उम्मीद रख रही हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेना है और बढ़िया टीवी लेना है लेटेस्ट मॉडल, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। लॉन्ग वीकेंड है, शॉपिंग करिए वहां पे जाके अपने घर के लिए, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, और जानकारी के लिए उनको कॉल कीजिए 905-799-0042, 905-799-0045। अभी तक 30 साल का आपने टैक्स नहीं भरा है, आपको HST फाइल करनी है, बिजनेस की पर्सनल जहाँ टैक्स भरना है, तो आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8835 पे कॉल कर सकते हैं। टोरंटो के आसपास में आपने घर खरीदना बेचना है, आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कीजिए 416-670-1313, 416-677-1313 पर आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए कौन सा गीत सुनाया जाए? सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।
0: जो जो ओल्ड इज गोल्ड सिलेक्शन है, उसी में से ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से ये गीत आपके लिए सुनाते हैं।
2: दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो,
0: तेरे घर के सामने
2: प्यार करे पुकार, प्यार का राग सुनो।

तो गुलाब का जवाब आपका, जो पता है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुमने तो दिया प्यार का राज सुनोगी, दिल का भर करे पुकार।

दीवाना पर न तुम गिराना आंसू के तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से आंसू छू लिया प्यार का।

0: तन न बैठे हार के साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू पूंज दिल के आरज़ू तुझे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया।
1: जी हाँ, एक और फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति पर है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और रात को आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनाएंगे और इसी तरह हम हमारा जो सफर है एक घंटे का मजे से गुजरेगा। तो बहुत सारे शहरों में फायरवर्क्स होगा, तो वीकेंड में खूब एंजॉय कीजिएगा, पर प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी सेफ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सुबह दा पला, हैव अ वंडरफुल एंड ए सेफ लॉन्ग वीकेंड।

अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तो क्या करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तो क्या करूंगा, एक पुत्र बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा।

प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: at 416-317-3487 today. Your job is done. Munish Deji, 416-317-3487, brokerage license 10039.
1: रोकी तू अपने इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca.

क्या बात है। देखो साढ़े सतेंद्र पाल सिंह सिद्धू कमाल है, कमाल दी आवाज़, कमाल दी हेक, ते कवीशरी विच तां फिर जान पा दिंदे सतेंद्र पाल सिंह सिद्धू। और देखो AM 530 दी पूरी जिहड़ी टीम दे लीडर ने और देखो रंग लाए हुए ने, सो विचों असीं वी उहनां दे कदमां दे उपर कदम रखदे हौली हौली उहनां दे पिछे पिछे। सो कमाल कमाल आ। सो बिल्कुल 905-673-3337 गल्लां बातां होणगीआं। बस 5 मिंट तक फिर रमेश हुशियारपुर जी होना रबता आपां कायम करदे आं, ते फिर खबरां दे उपर झाक पावांगे और तुहाडे सवाल जिन्ने भी आ तुसीं लैके आओ, रमेश जी उहनां दा जवाब देणगे। सो प्रोग्राम दे हिस्से नूं स्पोंसर कर रहे ने हरप्रीत सैनी जी, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस जां सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस बाबत कोई भी सवाल आ, तुसी किसी भी इंश्योरेंस के बाबत गलबात करनी है या हेल्थ डेंटल इन्वेस्टमेंट प्लान, तो हरप्रीत सैनी होना गलबात कर सकते हो। 416-817-6500 6416-817-6500 हरप्रीत सैनी जी। सो चोणां दीआं गल्लां, राजनीतिक गल्लां, सो मैनूं इह चीज़ां ना कुछ मेरे सिस्टम चों शुरू तों बाहर रहियां आ। सो मैनू ये लगता कि ये जिहड़ियां वैसे तो बहुत सारे मीम्स बने आ, बड़िया कवितावां बनिया, बड़ा कुछ लिखिया गया कि देखो ये वोटां तो पहला कुछ होर कहिंदे आ, बाद कुछ होर हो जांदे आ, पता सब नूं आ, पर आपां फिर देखो आपां नूं किसे ना किसे मगर ते लगना पैना ना, किसी ना किसी पार्टी के नाल तो जुड़ना पैना ना, ता कि आप चाहते हैं कि साडे देश का साडे सूबे का साडे पिंड पंजाब शहर का विकास होवे। अपने को चॉइस है नहीं ना कोई, सानू पता इन्होंने झूठ बोलना, इन्होंने लारे लाने आ। सो आप फिर अच्छा बड़ा खूब किसी ने कहा कि गल सप्पां दे बन्नांगे असी टल्लियां, गल सप्पां दे बन्नांगे असी टल्लियां, गरंटी पूरे 5 साल की, गल सप्पां दे असी बन्नांगे टल्लियां, गरंटी पूरे 5 साल की, देन डड्डुआं नू बगले तसल्लियां, करांगे राखी जान माल की, बिल्ला बिल्ला आखे कार नीच दुध तरांगे, अच्छा बिल्ला आखे कार नीच दुध तरांगे, खरबूजे नू गिदड़ कहे असी वाड़ करांगे कहे बकरी नू शेर चरो कल्लियां, कहे बकरी नू शेर चरो कल्लियां, गिद मेमने संभाल दी, देन डड्डुआं नू बगले तसलियां, करांगे राखी जान माल दी, घोड़ा घा नू कहे कि यारी पक्की आ, घोड़ा घा नू कहे कि यारी पक्की आ, सियौंक लकड़ां नू लाउंदी अट्टी सट्टी आ, जोकां लहू नू दलासे दे के चलियां, जोकां लहू नू दलासे दे के चलियां, सुरक्षा नहीं साढ़े नाल दी, देन डड्डुआं नू बगले तसलियां, करांगे राखी जान माल दी। हुण डड्डुआं नू देखो तसलियां दे रहे बगले भी कोई नहीं तुहानू बख्श दांगे ते तुहाडी जान माल दी राखी करांगे। ते नाल दी नाल बाज चिड़ियां नू हौसला दवाउंदे ने, बाज चिड़ियां नू हौसला दवाउंदे ने, कां वी घुग्गी संग दोस्ती वधाउंदे ने, कां वी घुग्गी संग दोस्ती वधाउंदे ने, तोता चूहे तों बचाए वेखो छलियां, तोता चूहे तो बचावे वेखो छलियां, गल कामे क्या कमाल दी, देन डड्डुआं नू बगले तसलियां, करांगे राखी जान माल दी। यार कमाल आ, आपां किद्दां पिछे लग जांदे फिर 905-673-3337।

0: 30 to 55 80
1: नेशनल बैंक कैनेडा विच थोड़ी पहले कदम चक्कन विच थोड़ी मदद करने ले इते है। मनी सेंस अनुसार 2025 कैनेडा विच नवे आने वाले ले सब तो वधिया बैंक बारे जानो अते नवे आने वाले ले सारी बैंकिंग सेवावां दे नाल शुरुआत करो। नेशनल बैंक कुछ बनाओ।
2: This is AM 530.

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी एक बजे एक घंटा होर तुहाडे लई बहुत सारे पैसे बचाउण दा इंतजाम करिए, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस होए जां फिर अपने ग्रैंड फर्नीचर वाले साडे सुख साहब होण, पैसे दी बचत कीती जाएगी। सुल्तान जी पुराना स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी लोंग वीकेंड है
1: जी,
0: इह क्वीन विक्टोरिया दा जन्मदिन सी।
1: हां जी,
0: मई 25 नूं लोंग वीकेंड शुरू हो गया। हुण तुसीं आपदा योगदान पाओ क्वीन विक्टोरिया दे जन्मदिन ते, तुसीं की स्पेशल दे रहे हो?
1: विक्टोरिया डे लोंग वीकेंड जिहड़ा जी, इहदे विच जिहड़ियां प्राइसिस है असीं ओह मदरस डे वालियां प्राइसिस जिहड़ियां कंपनी को दोबारा रिपीट करवाईआं। उहदी रीज़न इह है कि जिद्दां हमेशा असीं कहिंदे कि मदरस डे वी साल च एक वारी आउंदा ते मदरस डे दीआं प्राइसिस वी साल च एक वारी ही दित्तियां जांदियां, पर चंगी गल इह होई कि राइट आफ्टर मदरस डे विक्टोरिया डे लोंग वीकेंड आ गया ते कंपनी एग्री कर गया कि इहनू असीं एक्सटेंड कर दईए। सो इस करके लोएसट प्राइस गरंटिड अज तुहानू लैके दे रहे हां। जे आपां गल करिए ना जी काउंटर टॉप, काउंटर टॉप किचन अपलायंसिस ते निंजा क्रिस्पी, निंजा एक्चुअली प्रीमियम ब्रांड है जी काउंटर टॉप किचन अपलायंसिस दे विच, ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ने निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर जिहड़ा कि टू ग्लास कप्स दे नाल है, टू ग्लास पॉट्स दे नाल है, $300 वाला सिर्फ अद्धी प्राइस ते $149 च दे रहे हैं, पर है साडे कोल सिर्फ 4 पीस इन स्टॉक है। 4 लकी कस्टमर कैन गेट इट राइट वे, सिर्फ $149 च निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर लेना है ते राइट वे कॉल करके ते अपना होल्ड करा लो। 905-450-2828 नंबर है। जदों इहो जिहियां वधिया वधिया प्राइसिस मिलनी है फिर बिग स्क्रीन टीवी दे उपर,
0: हाँ जी
1: 85 इंच सैमसंग दा टीवी है जी,
0: 85 इंच सैमसंग डब्बे च बंद,
1: फैक्टरी सील्ड ब्रांड न्यू डब्बे च बंद। वैसे इहदी सेल प्राइस सीगी जी $1499, रेगुलर प्राइस हैगी इहदी $1800, पर ओनली एंड ओनली विक्टोरिया डे लोंग वीकेंड $999।
0: लो जी
1: सिर्फ $999 है, 18 मई मंडे तक अवेलेबल है। जे तुसी ट्यूजडे लवोगे अज ही दस देना कि ट्यूजडे आले दिन यह तुहानू $1500 का मिलना।
0: सैटरडे संडे मंडे ये तीन दिन
1: यही प्राइस रहेगी $999, 85 इंच ते $999, पे भी 6 महीने च करना।
0: हाँ, ब्याज कोई नहीं,
1: इंटरेस्ट कोई नहीं, डिलीवरी कोई नहीं चार्जेस, फ्री डिलीवरी भी है।
0: हाँ जी,
1: सो पहुंचना है तुसी बिग सेविंग्स बिग स्क्रीन दे उपर ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस 905-450-2828, 55 इंच टीवी चाहिदा नो प्रॉब्लम चक्को $399 दा, 65 इंच टीवी चाहिदा नो प्रॉब्लम चक्को $699 दा।
0: मुड़ के फिर आयो 50 इंच वाला किन्ने दा जी?
1: 50 इंच वाला तां $349 जी, 55 इंच वाला $399,
0: 65 इंच
1: वाला 65 नहीं हुण बनदा जी,
0: अच्छा
1: 65 इंच वाला $699 अप्रूवल ली है सैमसंग कंपनी को, $3500 वैसे दी प्राइस है, सेल ते $2799 दा वेच दे रहे हैं जी, $1999 98 इंच सैमसंग फ्री डिलीवर करवाना है ते 6 महीने च पे करना है, ते फिर राइट वे पहुंचना किथे जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस, या फिर brampton appliances.com साडी वैबसाइट तो डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी लै सकते जी। 905-450-2828 नंबर है, सिर्फ कॉल करके नाम ते नंबर दे के, चाहे तुहानू निंजा क्रिस्पी दा एयर फ्रायर चाहिए, चाहे तुहानू टॉप लोड वाशर एंड ड्रायर चाहिए, चाहे तुहानू 32 इंच तो लग के 98 इंच तक टीवी चाहिए है, सिर्फ तुसी कॉल करके अपना नाम ते नंबर दे के होल्ड करा लेना ते फिर शोरूम च आके चेक करके कंपेयर करके फिर डिलीवरी स्केजुअल करियो, क्योंकि पेमेंट तो तुसी 6 महीने च ही करनी है। ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 905-450-2858-59 ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ $300 ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ $149 ਦਾ 905-450-2858।
0: ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ,
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
1: ਜੀ
0: ਗਲਾਸ ਪੌਟ ਹੈ। ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਇਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ।
1: ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਵਾਸ਼, 15 ਮਿੰਟਸ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਪਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਜਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪ੍ਰੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਜਾਂ 8 ਪਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਨਿੰਜਾ ਜੂਸਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਰਟ ਦੇ ਜੂਸਿਸ ਹੈ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੂਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਰਟ ਵੀ, ਐਪਲ ਵੀ,
0: ਸੰਤਰੇ,
1: ਹਾਂਜੀ ਈਵਨ ਔਰੰਜਸ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂਸ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਫਿਲਟਰ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਪਲਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲਪ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪਲਪ ਜੂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਪਲਪ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪਲਪ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ।
0: ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਪਲਪ ਵਾਲਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਪ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ $400 ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 199 ਚ ਨਿੰਜਾ ਜੂਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਵੇਡ ਐਂਡ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੀ, 905-450-2858। ਚੱਕ ਲਓ, ਚੱਕ ਲਓ, ਡੀਲ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਸੋਲਡ ਆਊਟ।
0: ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੁਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।
1: 905-450-2858-9054502828।

0: लेके जा रहे हैं और लंच बॉक्स लेके जा रहे हैं, हम उनको इजी सोखे जो कोर्सेज वो चाहते कर रहे हैं और घर से कर रहे हैं. अनएम्प्लॉयड उबर ड्राइवर हाउसवाइफ हमारे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, स्किल भी हासिल करते हैं जी, साथ में 30 से लेकर $100,000 की फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करते हैं. और जुलाई के बाद रूल चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है, सिर्फ लोन आएगा. तो जो थोड़े जे रह गए ना वो भी एनरोल करो, पीछे ना रहो.
1: वेरी गुड. सो दोस्तों तुहाडे कोई होर क्वेश्चन ने तुसी सानू भी कॉल कर सकते हो, जां फिर यूनी ग्लोबल अज ही कॉल कर लो, टेक्स्ट कर लो नंबर टू कॉल 437-264-3175 437-264-3175 तुहानू ओवर द कॉल ही बाई जी हुणे दसेंगे कि तुसी इलिजिबल हो ते किन्ने पैसे लई इलिजिबल हो, की तुहानू करना चाहीदा. जदों तुहाडा प्रोग्राम अप्लाई हो गया तुहाडे खाते च $50,000 आ गया, इस तों बाद बाई जी तुहानू किन्ने पैसे देने? $199 to $499 काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी. बहुत शुक्रिया भाई जी, धन्यवाद.
0: थैंक यू.

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दिनाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए अजी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो बल्कि ये तो लोंग वीकेंड है यानी कि एक होर छुट्टी है सो प्रोग्राम नूं तुसी ट्यून इन कर चुके हो बहुत शुक्रिया जी रेडियो अंदाज दे विच मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारों नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुशामदीद एंड स्वागतम

आंखों में है इकरार तो इनकार है लब पर, उस शोख की देखी है हया और तरह की, जब दर्द मेरे दिल में नहीं है और तरह का, ऐ चारा अगर क्यों है दवा और तरह की। जिक्र दर्द दिल का चलने लगा है तो ये दर्द ना तो आंखों से बाया होता है और ना ही लिखने से, हाँ मगर जुबान कभी कभार बयां कर देती है, जैसे लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाज में इस गजल को कुछ यूं कहा है।

0: दिया वो दर्द ओ बेदर्द तूने, दिया वो दर्द ओ बेदर्द तूने, कोई जिस दर्द का चारा नहीं है, गिला हम क्या करें तेरी जफा का, मोहब्बत में गिला होता नहीं है। बात फिर दर्द की चली है तो दर्द दिल के टूटने पर होता है, जैसे फूल को टूटने पर होता है। फूल या तो खुशी को बयां करते हैं और कुछ फूलों के रंग दर्द को। कुछ ऐसा ही अर्ज किया है गुलाम अली ने अपनी इस उम्दा गजल में।
1: हीट वेव आ गई
2: की गल एनी जल्दी।
1: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
2: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
1: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
2: ओहो, उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
3: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
1: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
4: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
5: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.